हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो पाचो साइन ब्रेबियम साइन ब्रेबियम साइन ब्रेबियम।

0: हेलो हेलो हेलो
1: Shalom.
0: ये निया शलम आओ मी
1: Supernatural Auntie Martin.
0: ये अंतिमातो अंतिमातो या फ्यू या फ्यू या फ्यू अंतिमातो मैं पाचे ना हूँ तो सही
1: यूसु आदम में हुए पा
0: ये देनो ये द ओबा दियासी अंतिमाता अन्य पे डिक्लेन है यंको
1: अन्य पे दिन डिक्लेटो मैंने मेंबा एने में ना मामा में मेंशन एने मादो फोमस सोसे ना वो चीन ये उगाड़ी आकां फायर हूँ
0: Amen. Antimata, o nyankopɔ ɛnyɛ ne saa ɛmɔ, o nyankopɔ ɛnyɛ ne saa ɛmɔ.